आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और प्रोग्राम है भोर सुहानी। जीवन में राहें उलझ जाएं और दिशा समझ ना आए तो प्रभु का नाम ही सही मार्ग दिखाता है।

रह के अब आपसे अनुमति ले ली जाए। जाने से पहले बस यही कहूंगी कि आप खुश रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें और साथ ही साथ सुनते रहें आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। और मैं आपसे लेती हूँ अनुमति, छोड़ जा रही हूँ आपको एक बहुत ही प्यारे से गीत के साथ। जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।

कानूनी सहायता टेलीलॉ के ऐप वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।

सहायता टेलीलॉ के ऐप, वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।

0: की सभी 126 सीटों, केरलम की 140 और पुदुचेरी की 30 सीटों के लिए 9 अप्रैल को मतदान कराया गया था। तमिलनाडु की सभी 234 विधानसभा सीटों और पश्चिम बंगाल में पहले चरण के तहत 152 सीटों के लिए और दूसरे चरण में 142 सीटों के लिए मतदान कराया गया। कोलकाता से लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में 165 अतिरिक्त मतगणना पर्यवेक्षकों और 77 पुलिस पर्यवेक्षकों की तैनाती की है। मतगणना के दिन पुलिस पर्यवेक्षक किसी भी परिस्थिति में मतगणना कक्ष में प्रवेश नहीं करेंगे। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव की मतगणना की तैयारियां जोरों पर हैं। राज्य की सभी 234 विधानसभा सीटों पर 23 अप्रैल को एक ही चरण में मतदान हुआ था। मतगणना सोमवार सुबह 8 बजे डाक मतपत्रों से शुरू होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल चुनाव की मतगणना के लिए केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति के खिलाफ टीएमसी की याचिका में दखल देने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और जॉयमौल्य बागची की विशेष पीठ ने कहा कि निर्वाचन आयोग के पास मतगणना के लिए कर्मियों को नियुक्त करने का पूर्ण अधिकार है और 13 अप्रैल 2026 का परिपत्र, जिसमें केंद्रीय कर्मचारियों को शामिल करने का निर्देश था, उसे गलत नहीं कहा जा सकता। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के फलता विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों, जिनमें सहायक मतदान केंद्र भी शामिल हैं, उनमें दोबारा मतदान का आदेश दिया है। आयोग ने बताया कि बुधवार को फलता विधानसभा क्षेत्र के बड़ी संख्या में मतदान केंद्रों पर मतदान के दौरान चुनावी नियमों का गंभीर उल्लंघन हुआ और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बाधित किया गया। सभी मतदान केंद्रों पर इस महीने की 21 तारीख को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक दोबारा मतदान होगा। वोटों की गिनती 24 मई को होगी। छत्तीसगढ़ में कांकेर और नारायणपुर जिले की सीमा पर आज आईईडी निष्क्रिय करने के दौरान विस्फोट होने से सुरक्षा बलों के 4 जवान वीरगति को प्राप्त हो गए। इंस्पेक्टर सुखराम बट्टी और कांस्टेबल कृष्णा कोमरा, संजय गढ़पाले तथा परमानंद कोमरा विस्फोट में गंभीर रूप से घायल हो गए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। पुलिस के अनुसार थाना छोटे बेटिया में क्षेत्र में विस्फोटों को निष्क्रिय करने और छानबीन अभियान के लिए टीम रवाना की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉ आर बालसुब्रमण्यम और डॉ जोरम अनिया को नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त करने पर बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उनका समृद्ध अनुभव और विभिन्न मुद्दों की गहरी समझ नीति निर्माण को काफी मजबूत करेगी। प्रधानमंत्री ने उनके आगामी कार्यकाल के बहुत ही रचनात्मक और प्रभावशाली होने की कामना की। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रख्यात गीतकार, लेखक और संचार विशेषज्ञ प्रसून जोशी को भारत के लोक सेवा प्रसारक प्रसार भारती का अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री जोशी का साहित्य, विज्ञापन, सिनेमा और जनसंचार के क्षेत्र में व्यापक योगदान रहा है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने टी20 महिला क्रिकेट विश्व कप के लिए 15 सदस्य टीम की घोषणा कर दी है। हरमनप्रीत कौर को टीम का कप्तान और स्मृति मंधाना को उप कप्तान बनाया गया है। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल क्रिकेट में आज चेन्नई के एम चिदम्बरम स्टेडियम में मुंबई इंडियंस ने चेन्नई सुपर किंग्स के सामने 160 रन का लक्ष्य रखा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय नवनीता अधिकारी। In West Bengal, nearly 90% voter turnout was recorded in the re-polling held today across 15 booths in South 24 Parganas district. These include 11 booths in Magrahat Paschim constituency and 4 in Diamond Harbour seat. Repolling remained largely peaceful across the two assembly segments. The repolling was ordered by the Election Commission on the basis of reports received from the concerned returning officers and the observers. Voting on these polling stations was held on the 29th of last month in the second phase of assembly elections. Counting of votes for the assembly elections held in West Bengal, Keralam, Tamil Nadu, Assam and the Union Territory of Puducherry will be held on Monday. Voting for all 126 seats in Assam, 140 in Kerala and 30 seats in Puducherry was held on the 9th of April. Polling for all 234 assembly constituencies in Tamil Nadu and for the first phase in West Bengal covering 152 seats was held on the 23rd of April. Voting for the second phase in West Bengal took place on the 29th of last month for 142 constituencies. The Election Commission has ordered re-polling in all 285 polling stations, including auxiliary polling stations in Falta Assembly Constituency of West Bengal. The Commission mentioned that there has been severe electoral offences and subversion of democratic process during the polling in a large number of polling stations in Falta Assembly Constituency on Wednesday. Fresh poll will be held in all polling stations on 21st of this month from 7 a.m. to 6 p.m. Counting of votes will take place on 24th May. The Election Commission has deployed additional

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर वक्त हो चुका है ठीक 11:11:05 और ये वक्त है आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम गीत मेरे मनमीत का। और गीत मेरे मनमीत की इस बेहद खूबसूरत महफिल को लेकर हाजिर हूँ मैं यानी आपका अपना अजीज दोस्त फेरोज। तो आप तमाम सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार पुरखलूस आदाब। और गीत मेरे मनमीत में हम आपके लिए लेकर आते हैं गोल्डन एरा यानी सुनहरे दौर के उन नगमों को जो आपके दिल के बेहद करीब हैं। ये वो नगमे हैं जिन्हें आप बार बार सुनना चाहते हैं गुनगुनाना चाहते हैं। तो आइए आज के इस सफर का आगाज करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म के नगमे के साथ। ये फिल्म जिसका नाम है आवारा। ये फिल्म आई थी 1951 में। राज कपूर साहब के निर्देशन में बनी यह फिल्म जिसका निर्माण भी खुद राज कपूर साहब ने किया था और इस फिल्म को लिखा था ख्वाजा अहमद अब्बास ने। इस फिल्म में

किरदार निभाने वालों में पृथ्वीराज कपूर, राज कपूर, नरगिस, लीला चिटनी, केन सिंह और शशि कपूर। इस फिल्म के गीतों को लिखा है शैलेंद्र साहब ने और बहुत ही खूबसूरत संगीत से सवारा है शंकर जयकिशन साहब ने। तो आइए इसी फिल्म का एक बहुत ही प्यारा गीत मुकेश साहब की बहुत ही खूबसूरत आवाज में आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर गीत मेरे मनमीत की इस महफिल में आपके लिए।

आवाज थी मुकेश साहब की। बेहद खूबसूरत यह फिल्म है और यह फिल्म आई थी 1951 में। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर गोल्डन एरा के उन रोमांटिक गीतों को लेकर हाजिर हैं जो आपके दिल के बेहद करीब है। ये वो दौर था जब हमारे पास इतनी तकनीक नहीं थी, इतनी सुविधाएं नहीं थी, फिर भी हमारे उन महान कलाकारों ने, उन महान फिल्म मेकर्स ने ऐसी फिल्में बना दी जो हमेशा के लिए यादगार रह गई। सिर्फ यादगार ही नहीं बल्कि ये फिल्में अमर हो गई। उसी श्रेणी में एक और फिल्म आई थी 1952 में और वो फिल्म थी आन। महबूब खान साहब के निर्देशन में बनी यह फिल्म, जिसका निर्माण भी खुद महबूब खान ने किया था और इसको लिखा था एस अली रजा ने। इस फिल्म में मुख्य किरदार निभाने वालों में दिलीप कुमार, निमी, नादिरा, प्रेमनाथ वगैरह ने बहुत ही अहम किरदार निभाया था। यह फिल्म बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारी फिल्म थी, अपने दौर की बहुत ही कामयाब फिल्म थी। इस फिल्म के गीतों को बहुत ही

खूबसूरत तरीके से फिल्माया भी गया और गायकों ने बहुत ही खूबसूरत अपनी आवाज़ें भी बख्शी, जिसमें मोहम्मद रफ़ी साहब, लता जी, शमशाद बेगम और भी बहुत सारे लोगों ने इस फिल्म के गीतों को गाया है। उन्हीं में से एक बहुत ही प्यारा नगमा है जिसको लिखा है शकील बदायूनी साहब ने और बहुत ही खूबसूरत संगीत से संवारा है नौशाद साहब ने। तो आइए आन फिल्म का ये नगमा हम आपको सुनवाते हैं, मोहम्मद रफ़ी साहब, लता मंगेशकर और शमशाद बेगम की बहुत ही खूबसूरत आवाज़ों में, आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर गीत मेरे मनमीत की इस बेहद खूबसूरत महफिल में।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर वक्त हो चुका है ठीक 11:22 और 48 सेकेंड। महफिल सजी है आपके अपनी पसंदीदा गीतों की, गीत मेरे मनमीत। और गीत मेरे मनमीत में हम आपके लिए लेकर आते हैं गोल्डन एरा यानी सुनहरे दौर के उन नगमों को जो हम सबके दिल के बेहद करीब है और बहुत ही पसंदीदा नगमे होते हैं। इन नगमों को सुनने के बाद एक अलग सा सुकून हम सबके दिलो दिमाग में छा जाता है और कोशिश ये होती है कि हम इन नगमों को बार बार सुनते रहें, गुनगुनाते रहें। ऐसा ही एक नगमा हम आपके लिए लेकर आए हैं फिल्म बूट पॉलिश से। यह फिल्म आई थी 1954 में। इस फिल्म के निर्देशक थे प्रकाश अरोड़ा और इस फिल्म को राज कपूर साहब ने बनाया था या उनके निर्माण में बनी थी यह फिल्म। और इस फिल्म में जिन लोगों ने अभिनय दिखाए थे वो थे रतन कुमार, नाज, डेविड चंद बर्ग, बुधो आडवाणी और खुद राज कपूर साहब ने। खास बात यह है कि इस फिल्म के गीतकार शैलेंद्र ने एक नेत्रहीन गायक के रूप में चली कौन से देश गाना भी गाया था। इस फिल्म के गीतों को लिखा है शैलेंद्र साहब ने और साथ ही साथ हसरत जयपुरी साहब ने और बहुत ही खूबसूरत संगीत से संवारा है शंकर जयकिशन साहब ने। इसी फिल्म का यह नगमा बूट पॉलिश का यह नगमा आशा भोसले जी और मन्ना डे साहब की बहुत ही प्यारी आवाजों में आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर गीत मेरे मनमीत की इस महफिल में खास तौर से आपके लिए।

0: बढ़ता चल
1: बढ़ता चल
0: बढ़ता चल
1: बढ़ता चल
0: बढ़ता चल बढ़ता चल तुम्हें है प्यारे लाखों में तू बढ़ता चल
1: बढ़ता चल
0: बढ़ता चल
1: बढ़ता चल
0: रुकना नहीं तुझे रुकना नहीं घबरा न कहीं तेरी है जमी तू बढ़ता चल
1: बढ़ता चल
0: तुझे रुकना नहीं तुझे रुकना

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर एक छोटे से वक्फे के बाद एक बार फिर मैं फिरोज आप तमाम सुनने वालों का शानदार इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ गीत मेरे मनमीत की इस बेहद खूबसूरत महफिल में। वक्त हो चुका है हमारे स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक ठीक 11:33:04 महफिल सजी है आपकी अपनी पसंदीदा गीत मेरे मनमीत की। और गीत मेरे मनमीत में सुनहरे दौर के यानी गोल्डन एरा के उन नगमों के साथ हम हाजिर हैं जो आपके दिल के बेहद करीब हैं। ये वो नगमे हैं जिन्हें बार बार आप सुनना चाहते हैं, गुनगुनाना चाहते हैं और कई बार आप इन्हें देखना भी चाहते हैं। तो उस दौर के जो नगमे हैं यानी 1947 से लेकर के 1965 के आसपास के जो नगमे हैं, जो फिल्में हैं, बेहद खूबसूरत फिल्में और माइलस्टोन ये मूवी थी, वो तमाम फिल्में जो उस दौर में बनी आज भी हम उन्हें जब भी देखते हैं तो हमें उस दौर में लेकर चले जाते हैं जब सब कुछ बिल्कुल नया नया था। उसी दौर में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था CID और यह फिल्म आई थी 1956 में। राज खोसला साहब के निर्देशन में बनी इस फिल्म में, इस फिल्म को लिखा था इंद्रराज आनंद ने और इस फिल्म में मुख्य किरदार निभाने वालों में देवानंद, शकीला, वहीदा रहमान, केन सिंह, जोनी वॉकर और साथी कलाकारों में कुमकुम, महमूद, मीनू मुमताज, टुनटुन, दिलराज, जगदीश वगैरह ने बहुत ही खूबसूरत अभिनय किया था। इस फिल्म के गीतों को लिखा मजरूह सुल्तानपुरी साहब ने और जानिसार अख्तर साहब ने और बहुत ही खूबसूरत संगीत से सवारा था पोपी नैयर साहब ने। इसी फिल्म का एक बहुत ही प्यारा नगमा हम आपके लिए लेकर आए हैं। शमशाद बेगम, आशा भोसले और मोहम्मद रफी साहब की बहुत ही खूबसूरत आवाजों में आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर गीत मेरे मनमीत की इस बेहद खूबसूरत महफिल में।

हाजिर हैं जो आपके दिल के बेहद करीब है। और इस कड़ी में अगला नगमा एक और बहुत ही खूबसूरत फिल्म से हम आपके लिए लेकर आए हैं, जो फिल्म आई थी 1957 में। इस फिल्म के निर्देशक थे बी.आर. चोपड़ा साहब, और बी.आर. चोपड़ा साहब ने ही इसका निर्माण भी किया था। इस फिल्म में जिन कलाकारों ने अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए थे उनमें दिलीप कुमार, वैजयंती माला, अजीत, जीवन, जॉनी वॉकर, चांद उस्मानी, नाजिर हुसैन, मनमोहन कृष्ण, लीला चिटनीस, प्रतिमा देवी, डेजी ईरानी, मूलचंद, मीनू मुमताज और कुमकुम वगैरह ने बहुत ही खूबसूरत अभिनय किया था। इस फिल्म के गीतों को लिखा साहिर लुधियानवी साहब ने और बहुत ही खूबसूरत संगीत से सवारा एक बार फिर से ओपी नैयर साहब ने। तो आइए इसे फिल्म का बहुत ही खूबसूरत गीत, यानी फिल्म नया दौर का बहुत ही खूबसूरत गीत, एक बार फिर से मोहम्मद रफी साहब, आशा भोसले और

शमशाद बेगम, आशा भोसले और मोहम्मद रफी साहब की बेहद खूबसूरत आवाजों में यह नगमा था फिल्म सीआईडी से, और ये फिल्म आई थी 1956 में। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम गीत मेरे मनमीत, और गीत मेरे मनमीत में गोल्डन एरा के उन रोमांटिक और सदाबहार नगमों के साथ

संगीत से सवारा एक बार फिर से ओपी नैयर साहब ने। तो आइए इसे फिल्म का बहुत ही खूबसूरत गीत यानी फिल्म नया दौर का बहुत ही खूबसूरत गीत एक बार फिर से मोहम्मद रफी साहब, आशा भोसले और मोहम्मद रफी साहब और आशा जी की बहुत ही खूबसूरत आवाजों में।

फिल्म नया दौर का यह नगमा था मोहम्मद रफी साहब आशा भोसले जी की बहुत ही प्यारी आवाजों में, और यह फिल्म आई थी 1957 में। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। गोल्डन एरा के उन रोमांटिक और सदाबहार गीतों के साथ हम हाजिर हैं। गोल्डन एरा के नगमों में हम आपके लिए उन नगमों को चुनकर लाते हैं जिन्हें आप बार बार सुनना चाहते हैं, गुनगुनाना चाहते हैं, और कई बार आप झूमने भी लगते हैं नगमों को सुनकर। उन्हीं नगमों में से ये नगमा था नया दौर का, जिस पर यकीनन आपने जरूर झूमना शुरू कर दिया होगा। अब इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं और गीत मेरे मनमीत के इस सफर को आगे बढ़ाते हैं एक और बहुत ही खूबसूरत फिल्म के नगमे के साथ। और ये फिल्म है 1963 में आई मेरे महबूब के नगमे से हमने लिया है ये नगमा, और जिसके निर्देशक थे एस रवेल साहब, जिसका निर्माण भी खुद उन्होंने ही किया था, यानी HS रवेल साहब ने ही किया था। इस फिल्म के गीतों को बहुत ही खूबसूरती से लिखा था शकील बदायूनी साहब ने, और बहुत ही खूबसूरत संगीत से संवारा था नौशाद साहब ने। और इस फिल्म में जिन लोगों ने मुख्य किरदार निभाया था उनमें राजेंद्र कुमार, साधना, निमी, अशोक कुमार, प्राण, जॉनी वॉकर, अमिता, मुमताज बेगम और मलाइका वगैरह ने बहुत ही अहम और खूबसूरत किरदार निभाया था। इसी फिल्म का एक नगमा है जो हम आपके लिए लेकर आए हैं लता जी की आवाज में, और इसको लिखा है शकील बदायूनी साहब ने, और बहुत ही खूबसूरत संगीत से संवारा है नौशाद साहब ने।

फिल्म मेरे महबूब के इसी नगमे के साथ अब आगे बढ़ते हैं एक और बहुत ही खूबसूरत कव्वाली के साथ। आवाजें हैं शमशाद बेगम और उषा मंगेशकर की। इसे लिखा है साहिर लुधियानवी साहब ने और बहुत ही खूबसूरत संगीत से सवारा है रवि साहब ने। और ये कव्वाली है 1963 में आई फिल्म आज और कल से। तो आइए सुनते हैं ये कव्वाली।

फिल्म आज और कल की इसी कव्वाली के साथ मुझे यानी फेरोज को अब दीजिए इजाजत। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार, और समाचारों के बाद आप सुनेंगे अगला प्रोग्राम। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के फलता विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों, जिनमें सहायक मतदान केंद्र भी शामिल हैं, उनमें दोबारा मतदान का आदेश दिया है। आयोग ने बताया कि बुधवार को फलता विधानसभा क्षेत्र के बड़ी संख्या में मतदान केंद्रों पर मतदान के दौरान चुनावी नियमों का गंभीर उल्लंघन हुआ और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बाधित किया गया। अब इन सभी मतदान केंद्रों पर इस महीने की 21 तारीख को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक दोबारा मतदान होगा। वोटों की गिनती 24 मई को होगी। पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले में विधानसभा की 2 सीटों के 15 बूथों पर कल पुनर्मतदान कराया गया। मगराहट पश्चिम के 11 बूथ और डायमंड हार्बर के 4 बूथ पर वोट डाले गए। कल शाम 5 बजे तक लगभग 87% मतदान हुआ।
1: दोनों ही विधानसभा क्षेत्रों में मतदान कुल मिलाकर शांतिपूर्ण रहा। चुनाव आयोग ने संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों और पर्यवेक्षकों से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर पुनर्मतदान का आदेश दिया था। इन मतदान केंद्रों पर विधानसभा चुनावों के दूसरे चरण के तहत पिछले महीने की 29 तारीख को वोट डाले गए थे। पश्चिम बंगाल, केरलम, तमिलनाडु, असम और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में विधानसभा चुनावों के वोटों की गिनती सोमवार को होगी। असम की सभी 126 सीटों, केरलम की 140 और पुदुचेरी की 30 सीटों के लिए 9 अप्रैल को मतदान कराया गया था। तमिलनाडु की सभी 234 विधानसभा सीटों और पश्चिम बंगाल में पहले चरण के तहत 152 सीटों के लिए और दूसरे चरण में 142 सीटों के लिए मतदान कराया गया। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में 165 अतिरिक्त मतगणना पर्यवेक्षकों और 77 पुलिस पर्यवेक्षकों की तैनाती की है। मतगणना के दिन पुलिस पर्यवेक्षक किसी भी परिस्थिति में मतगणना कक्ष में प्रवेश नहीं करेंगे। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव की मतगणना की तैयारियां जोरों पर हैं। राज्य की सभी 234 विधानसभा सीटों पर 23 अप्रैल को एक ही चरण में मतदान हुआ था। मतगणना सोमवार सुबह 8 बजे डाक मतपत्रों से शुरू होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल चुनाव की मतगणना के लिए केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति के खिलाफ टीएमसी की याचिका में दखल देने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और जॉय माल्य बागची की विशेष पीठ ने कहा

0: कि निर्वाचन आयोग के पास मतगणना के लिए कर्मियों को नियुक्त करने का पूर्ण अधिकार है और 13 अप्रैल 2026 का परिपत्र जिसमें केंद्रीय कर्मचारियों को शामिल करने का निर्देश था उसे गलत नहीं कहा जा सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉ आर बालासुब्रमण्यम और डॉ जोरम अनिया को नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्ति होने पर बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि उनका समृद्ध अनुभव और विभिन्न मुद्दों की गहरी समझ नीति निर्माण को काफी मजबूत करेगी। प्रधानमंत्री ने उनके आगामी कार्यकाल के बहुत ही रचनात्मक और प्रभावशाली होने की कामना की। छत्तीसगढ़ में कांकेर और नारायणपुर जिले की सीमा पर आईईडी निष्क्रिय करने के दौरान विस्फोट होने से सुरक्षा बलों के 4 जवान वीरगति को प्राप्त हो गए। इंस्पेक्टर सुखराम बट्टी और कांस्टेबल कृष्णा कोमरा, संजय गढ़पाले तथा परमानंद कोमरा विस्फोट में गंभीर रूप से घायल हो गए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। पुलिस के अनुसार थाना छोटे बेठिया क्षेत्र में विस्फोटों को निष्क्रिय करने और छानबीन अभियान के लिए टीम रवाना की गई थी। मणिपुर में इम्फाल उखरुल मार्ग पर कुछ अज्ञात हथियारबंद उपद्रवियों ने राहगीरों पर गोलीबारी की जिससे क्षेत्र में दहशत फैल गई और सामान्य यातायात बाधित हो गया। ये घटना उखरुल जिले के लिल्टन पुलिस थाना के अंतर्गत न्यू हेवन और टीएम कसोम क्षेत्र में हुई। घटना का समाचार मिलने तक किसी के हताहत होने की कोई पुष्टि नहीं हुई है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने टी20 महिला क्रिकेट विश्व कप के लिए 15 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है। हरमनप्रीत कौर को टीम का कप्तान और स्मृति मंधाना को उपकप्तान बनाया गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय नवनीता अधिकारी। In West Bengal, nearly 90% voter turnout was recorded in the re-polling held yesterday across 15 booths in South 24 Parganá district. These include 11 booths in Magrahat Pashchim constituency and 4 in Diamond Harbour seat. Re-polling remained largely peaceful across the two assembly segments. The re-polling was ordered by the Election Commission on the basis of reports received from the concerned returning officers and the observers. Voting on these polling stations was held on the 29th of last month in the second phase of assembly elections. Counting of votes for the assembly elections held in West Bengal, Kerala, Tamil Nadu, Assam and the Union Territory of Puducherry will be held on Monday. Voting for all 126 seats in Assam, 140 in Kerala and 30 seats in Puducherry was held on the 9th of April. Polling for all 234 assembly constituencies in Tamil Nadu and for the first phase in West Bengal covering 152 seats was held on the 23rd of April. Voting for the second phase in West Bengal took place on the 29th of last month for 142 constituencies. The Election Commission has ordered re-polling in all 285 polling stations including auxiliary polling stations in Palta assembly constituency of West Bengal. The Commission mentioned that there has been severe electoral offences and subversion of democratic process during the polling in a large number of polling stations in Palta Assembly constituency on Wednesday. Fresh poll will be held in all polling stations on 21st of this month from 7 a.m. to 6 p.m. Counting of votes will take place on 24th May. The Election Commission has deployed additional counting observers and police observers in West Bengal. A total of 165 additional counting observers have been assigned to assist counting observers, while 77 police observers have been deployed to strengthen security and oversee law and order arrangements around counting centres. The Commission said these measures are aimed at ensuring that the counting process is conducted in a secure, peaceful, intimidation-free and transparent manner. However, it clarified that police observers will not enter the counting halls under any circumstances on the day of vote counting. The Supreme Court of India has declined to interfere with the Election Commission's decision to appoint only central government employees as counting supervisors in West Bengal elections. A bench comprising Justice P.

AIRFM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर मैं हूं आपके साथ रश्मि कुकरेती और अब जो कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आए हैं वो है आपका पसंदीदा पानी पर लिखी कहानी। आज इस कार्यक्रम में हम लेकर आए हैं मंजू बत्रा की लिखी कहानी उजाले की ओर। दोस्तों

0: कुछ लोग बहुत बड़ा करना चाहते हैं। वो अपने अलावा दूसरों के बारे में सोचते हैं। लाचार और बेबस लोगों की मदद करना चाहते हैं। जब वो काम करने निकलते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि उनकी इस मुहिम में कुछ और लोग भी अपने आप हाथ लगा देते हैं और तभी मिल पाता है उजाला। ऐसी ही कुछ कहानी है आज की, जिसको सुना रही हैं मंजू बत्रा, और ये कहानी भी उन्हीं की कलम से। तो आइए सुनते हैं। एक बात और कह दूं, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगती है या कुछ और कहना चाहते हैं इस कहानी के बारे में, तो हमें जरूर मैसेज करें व्हाट्सएप पर। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868868753। इस पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस आप सभी को मालूम है, fmgoldairdelhi@gmail.com। दोस्तों, हमें आपके संदेश की प्रतीक्षा रहेगी। आपके संदेश हमें अगली कहानी को और अच्छा करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो ज्यादा कुछ न कहते हुए आइए सुनते हैं ये कहानी।
1: रेलवे स्टेशन पर धक्का मुक्की और शोरगुल के बीच गरिमा दौड़ती भागती प्लेटफॉर्म पर दाखिल होती है। वो मन ही मन बड़बड़ा रही थी, इस इंटरनेट पैक को भी आज ही खत्म होना था। मैं भी कितनी बुद्धू हूँ, सुबह से ही इतनी हड़बड़ी में रही कि मोबाइल रिचार्ज करने का ना तो मुझे ख्याल रहा और ना ही वक्त। मैंने ट्रेन की लाइव लोकेशन भी चेक नहीं की। कोई मेरे जितना लापरवाह कैसे हो सकता है। गरिमा ने ध्यान से प्लेटफॉर्म पर होने वाली अनाउंसमेंट को सुना।
2: कृपया ध्यान दीजिए, 12621 तमिलनाडु एक्सप्रेस नागपुर भोपाल के रास्ते।
1: अनाउंसमेंट हो रही थी चेन्नई एक्सप्रेस अपने तय समय से ठंड और कोहरे की वजह से 4 घंटे देरी से है। 4 घंटे इंतजार, गरिमा का दिल बैठ गया। वो बेमन से सामान की ट्रॉली और अपने शरीर को खींचते हुए वेटिंग रूम के बारे में पता करने लगी। मैम, यहाँ 2 तरह के वेटिंग रूम हैं, नॉन एसी और एसी। आप कौन सा वाला लेंगी? अच्छा, ये बताओ क्या डिफरेंस है दोनों में? फैसिलिटी और सर्विस का डिफरेंस है मैम। अच्छा अच्छा, ऐसा करो मुझे एक एसी वेटिंग रूम का टिकट दे दो। अच्छा मैम। टिकट लेने के बाद गरिमा मन ही मन सोचने लगी, यात्राएं तो महंगी सस्ती होती हैं, पर इंतजार भी महंगा और सस्ता होता है। इस बात पर तो उसने कभी गौर ही नहीं किया। वो मन ही मन मुस्कुराने लगी। एसी वेटिंग रूम का टिकट अपने पॉकेट में रखकर गरिमा प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर आसपास नजरें दौड़ाने लगी। प्लेटफॉर्म पर कोने में एक फकीर और उसकी बेटी गाना गा रहे थे।

रेलवे स्टेशन पर मध्यम रोशनी है, ऐसी रोशनी कि जिसे ना तो उजाला कहा जा सकता है और ना ही ऐसी ओझलता कि जिसे अंधेरा ही कह दिया जाए। रेलवे लाइन आपस में कितनी टकराती हैं, पर मजाल है किसी ट्रेन ने दूसरी ट्रेन को रास्ता ना दिया हो। गरिमा ठंड से कांप रही थी, दिसंबर की ठंड उछल कर जनवरी के महीने में कूद आई थी। ऐसा लग रहा था मानो ठंड ने कोहरे को अपने बच्चे की तरह गोद में बिठा रखा हो। प्लेटफॉर्म पर छोटे छोटे स्टॉल पर नए साल के बीत जाने के बाद भी ग्रीटिंग कार्ड किसी के इंतजार में सांसे भर रहे थे। इस बार गरिमा जल्दबाजी में कोई नॉवेल अपने साथ रखना भूल गई है और ऊपर से 4 घंटे का इंतजार, अब वो क्या करे। गरिमा मन ही मन सोचती है कि उसने हमेशा ही दौड़ती ट्रेन में ठहरे जीवन के फलसफों को नॉवेल में पढ़ा है, तो क्यों ना इस बार ठहरे हुए वक्त में अपनी जिंदगी की रफ्तार को लिख लिया जाए। यही सोचकर गरिमा ने स्टॉल से एक ग्रीटिंग कार्ड खरीद लिया। ग्रीटिंग कार्ड लेकर गरिमा वेटिंग रूम में आ जाती है और कोने में रखी टेबल कुर्सी पर बैठकर ग्रीटिंग कार्ड लिखने लगी। लिखते हुए वो सोचती है उसके पास वक्त भी निर्धारित है और स्पेस भी। ग्रीटिंग कार्ड के सिर्फ 2 पेज और इंतजार के 4 घंटे। सिर्फ इस टाइम और स्पेस में उसे अपनी बात खत्म करनी होगी। इसलिए गरिमा ज्यादा स्मृतियों में ना जाकर पिछले दिसंबर के महीने में खुद को उतार देती है। हाँ, दिसंबर के ठंड के दिन ही थे जब उसकी डॉक्टर कार्तिक से मुलाकात हुई थी। डॉक्टर कार्तिक 2 गली छोड़कर गरिमा के फ्लैट के सामने वाले बंगले में रहते हैं। डॉक्टर कार्तिक ने पूरे बंगले को ही हॉस्पिटल बना रखा है। बेसमेंट में मरीजों को एडमिट करने का अरेंजमेंट है। फर्स्ट फ्लोर पर रूटीन चेकअप के बाद प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं। सेकंड फ्लोर ही है जहां पर दवाइयों की स्मेल नहीं आती और वो है उनका बेडरूम। एक दिन गरिमा एक बच्चे का इलाज कराने डॉक्टर कार्तिक के घर गई। क्या हुआ इन्हें? पैर में हल्की सी मूछ है डॉक्टर। क्या कर रहे थे नन्हे जनाब कि आपके पैर में मूछ आ गई? विभू डर के मारे गरिमा की तरफ देखता है और गरिमा डॉक्टर को जवाब देती है, कुछ नहीं डॉक्टर, कल रात रजाई में बैठकर शक्तिमान देखते रहे और सुबह मुंह से स्मोक धुआं निकाल निकाल कर अपने दुश्मनों को मारते फिर रहे थे, और फिर भी तमराज किलविश नहीं मरे तो छत पर जाकर शक्ति शक्ति शक्तिमान शक्ति शक्ति शक्तिमान बोलकर गोल गोल घूमकर सीधा टेरेस से बालकनी में आ गिरे हैं और नतीजा आपके सामने हाजिर है। डॉक्टर कार्तिक और गरिमा दोनों विभू के बालमन पर जोर जोर से हंसने लगते हैं, जिसे देखकर विभू शर्मा जाता है और गरिमा को जोर से पकड़ लेता है। गरिमा के जाने के बाद डॉक्टर कार्तिक गरिमा की पर्सनैलिटी और बिहेवियर से बड़ा खुश होते हैं, पर डॉक्टर कार्तिक समझ नहीं पा रहे थे कि इतनी कम उम्र लड़की का बच्चा इतना बड़ा कैसे हो सकता है। वो अपने नौकर मनोहर से पूछते हैं, कौन थी ये मैडम? साहब प्रोफेसर है, अनाथ बच्चों को पालती है। सामने वाली बिल्डिंग में पूरे 2 फ्लैट पर कब्जा किया हुआ इसने, ना जाने कहां से किस किस को उठा लाती है। कभी भी कहीं से भी कोई भी जख्मी कुत्ता उठा लाती है, फिर उसकी मरहम पट्टी करती है, खाना खिलाती है, ठंड में कपड़े पहनाती है, गरीब बच्चों को पेंसिल किताबें बांटती फिरती है। अभी पिछले

अंडे कॉलोनी के पीछे वाले पार्क में लोगों के सामने भाषण दे रही थी और बोल रही थी कि सभी अपने बच्चों को जरूर स्कूल भेजें। सरकारी स्कूल में शिक्षा और खाना बिल्कुल मुफ्त मिलता है। पूरी बिल्डिंग के नाक में दम कर रखा है साहब इसने। साहब खुद का कोई घर परिवार तो है नहीं, इसलिए अनाथों को पालती फिरती है। घर गृहस्थी की कोई जिम्मेदारी तो है नहीं, शादी तो की नहीं इसने। क्या कहना चाहते हो तुम? शादी तो मेरी भी नहीं हुई। साहब आपकी बात अलग है। कैसे अलग है? डॉक्टर कार्तिक ने चश्मे को टेबल पर रखते हुए पूछा। वो हमें नहीं मालूम साहब, लेकिन आप इन मैडम से बहुत बेहतर हैं। और हाँ, इन मैडम से थोड़ा दूर ही रहिए। लोगों से कपड़े मांगती फिरती है, कभी कुत्तों के लिए खाना मांगती है, कुछ ना कुछ मांगती ही रहती है। छोड़िए साहब, आप भी क्या बात लेकर बैठ गए, मैंने खाना लगा दिया है, आइए खाना खाते हैं। डॉक्टर कार्तिक को मनोहर की बातों में एक संकीर्णता नजर आई और वो पूरी रात

0: एक दिन मॉर्निंग वॉक के दौरान कॉलोनी के पार्क में डॉक्टर कार्तिक को गरिमा नजर आती है। उनके कदम ना चाहते हुए भी गरिमा की ओर खींचे चले आते हैं। गुड मॉर्निंग गरिमा जी। गुड मॉर्निंग डॉक्टर कार्तिक, आप कैसी तबीयत है नन्हे शक्तिमान की? अच्छा है, मैंने सुना है बहुत बड़ा परिवार है आपका।
1: जी हाँ, पूरे 16 बच्चे और 18 स्ट्रीट डॉग्स की माँ हूँ मैं।
0: और एक हमें देखिए, पूरे घर में एन मीन तीन लोग भी नहीं। अच्छा गरिमा जी, मैं चलता हूँ। मॉर्निंग वॉक पर रोज ही डॉक्टर कार्तिक और गरिमा अपनी दिनचर्या को लेकर अक्सर बातें करने लगे। एक दिन डॉक्टर कार्तिक गरिमा को अपने घर पर चाय के लिए इनवाइट करते हैं और कहते हैं कि उनका एक दोस्त कल शाम उनसे मिलने अमेरिका से आ रहा है और कल शाम का वक्त वो उनके और उनके फ्रेंड के साथ बिताए तो उन्हें अच्छा लगेगा। गरिमा भी हाँ कह देती है। डॉक्टर कार्तिक केतली से कप में चाय डालते हुए कहते हैं, गरिमा जी इनसे मिलिए, ये हैं अंकुर सक्सेना। हम दोनों बचपन के दोस्त हैं, हमने साथ साथ स्कूलिंग की, कॉलेज भी साथ गए और फिर हम दोनों हायर एजुकेशन के लिए अमेरिका चले गए। मैं MBBS करके लौट आया पर अंग्रेजी जर्नलिज्म ने इसके पैर बांध दिए और ये वहीं सेटल हो गया। आजकल ये अमेरिका की किसी न्यूज एजेंसी में सीनियर जर्नलिस्ट है। और अंकुर, अब इनसे मिलिए, ये हैं प्रोफेसर गरिमा, ये यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हैं। तुम्हें मालूम है कितनी बड़ी फैमिली है इनकी? पूरे 16 बच्चे और 18 डॉग्स की माँ है ये। डॉक्टर कार्तिक, मैं तो इस फैमिली को और भी बड़ा करना चाहती हूँ पर मैं करूँ क्या? मैं तो अपने आप को इस मामले में बहुत बेबस और लाचार समझती हूँ। अभी मेरे पास सिर्फ वो बच्चे हैं जिनका इस संसार में कोई नहीं है, जो पूरी तरह से अनाथ हैं, जो चाय की दुकानों पर, ढाबों पर लोगों की जूठन धोते हैं, जो रेड लाइट रेलवे स्टेशन पर भीख मांगते हैं, नाम के नाम पर, पहचान के नाम पर जिनके हिस्से में छोटू, गुड्डू जैसे शब्द ही आ पाते हैं। आपको मालूम है, जब मैं इनके शरीर पर स्कूल यूनिफॉर्म देखती हूँ, कंधों पर स्कूल बैग, हाथों में रंगीन

किताबें देखती हूँ, स्कूल जाते इनके नन्हे नन्हे कदमों की आहट सुनती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है मानो पूरी पृथ्वी बौनी हो गई हो, मानो इन कदमों ने पूरी पृथ्वी को नाप लिया हो। मेरे भीतर की इस माँ को समझा है कभी किसी ने? मैं चाहती भी नहीं कि लोग मुझे समझें, पर मुझे वो ना समझें जो मैं नहीं हूँ। मेरी सैलरी से मैं बस इतने ही अनाथ बच्चों को पाल पाती हूँ। जब कोई अनाथ बच्चा मेरे दरवाजे से बिना शरण लौट जाता है, मैं समझा नहीं सकती मेरा दिल कितने टुकड़ों में फट जाता है। क्या महसूस किया है आपने कभी ऐसी माँ के कलेजे को?

लंबी और गहरी सांस भरते हुए अंकुर ने गरिमा से कहा, तो आप न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स क्यों नहीं लिखती? बहुत सी एनजीओज हैं जो आपकी मदद कर सकती हैं। मेरी कलम घिस गई है आर्टिकल लिखते लिखते। और आर्टिकल ही क्यों, मैंने तो कई कॉन्फ्रेंसेस में लंबे लंबे भाषण भी दिए हैं, पर मुझे कहीं से भी कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला। आई एम स्टिल हेल्पलेस मिस्टर अंकुर, आई एम स्टिल हेल्पलेस। मैं आज भी बेसहारा हूं, मैं आज भी बेबस हूं। गरिमा डॉक्टर कार्तिक और मिस्टर अंकुर के चेहरों की तरफ देखती है और कहती है, आई एम सॉरी डॉक्टर कार्तिक, मैं

भावनाओं में बह गई थी। इस खुशी के मौके पर न जाने क्या उठपटांग बात लेकर बैठ गई। अच्छा डॉक्टर कार्तिक, मुझे इजाजत दीजिए, मेरे बच्चों का डिनर का वक्त हो गया है, मुझे खाना बनाना है। क्या मेड नहीं रखी आपने? मेड? नौकर रखने का मतलब है मेरे एक बच्चे की एजुकेशन का खत्म हो जाना। नाइस टू मीट यू मिस्टर अंकुर, मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। अब मैं चलती हूँ, मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। लिसन गरिमा जी, ये मेरा कार्ड है, आप इस पर मुझे अपने आर्टिकल्स भेजिएगा।

0: वॉक करते हुए गरिमा नोटिस करती है पिछले 3 दिनों से डॉक्टर कार्तिक मॉर्निंग वॉक पर नहीं आए हैं। गरिमा सोच में पड़ जाती है कि कहीं उस दिन चाय पर उनके दोस्त के सामने वो कुछ ज्यादा तो नहीं भूल गई थी। उसका मन बेचैन हो उठता है और वो शाम को डॉक्टर कार्तिक के घर जाती है। डॉक्टर कार्तिक अपने अंधेरे कमरे में लेटे हुए हैं। डॉक्टर कार्तिक कौन? गरिमा जी? जी हाँ, क्या हुआ आपको? आजकल आप मॉर्निंग वॉक पर नहीं आते?
1: कुछ नहीं,
0: थोड़ी तबीयत खराब है। डॉक्टर होकर आप भी बीमार हो गए? यही तो गलत फहमी है आप लोगों की कि डॉक्टर बीमार नहीं हो सकते। डॉक्टर्स का दिल धड़कना बंद नहीं करता। हम डॉक्टर को भी कई बार दूसरे डॉक्टर की जरूरत पड़ती है। तो फिर आपने किसे बुलाया अपने इलाज के लिए? डॉक्टर साहिबा आज खुद ही चली आई हमारी बीमारी पूछने। आप कहना क्या चाहते हैं डॉक्टर कार्तिक? नहीं, मैं कहना नहीं, समझाना चाहता हूँ। क्या? यही कि आपसे मिलने से पहले मेरी सोच कितनी सीमित थी। मुझे ऐसा लगता था कि गरीब लोगों का मुफ्त में

0: इलाज करके मैं कोई बहुत महान काम कर रहा हूँ। और कई जगहों पर तो मैंने ये भी कहा कि मैं लोगों की मदद करने में इतना मसरूफ हूँ कि मुझे शादी करने का भी वक्त नहीं मिला। शादी ना करना मेरे लिए ऐसा त्याग रहा जो मैं समाज पर उधार की तरह वसूलता रहा। पर उस दिन जब मैंने आपको सुना तो लगा एक ऐसा इंसान जिसने अपना सब कुछ लोगों में बांट दिया और फिर भी अपने आप को कितना बेबस और लाचार समझती है। गरिमा जी, मेरा दिल आपकी तरह तो नहीं है, पर फिर भी मैं चाहता हूँ कि मैं आपके किसी काम आ सकूँ। मुझे अपना ये बड़ा घर अब तहखाना सा लगता है। आप बुरा ना माने तो अपने नए बच्चों को यहाँ जगह दे सकती हैं। आपको पता है गरिमा जी, मुझे अभी तक जिंदगी से यही शिकायत रही कि मुझे मुझ जैसा कोई सोलमेट क्यों नहीं मिला, पर आपसे मिलने के बाद मेरी शिकायत भी खत्म हो गई। गरिमा जी, मैं आप पर कोई हक नहीं चाहता, आपका साथ चाहता हूँ। आप एक और अनाथ को अपने परिवार में शामिल कर लीजिए, मुझे अच्छा लगेगा। देखिए डॉक्टर कार्तिक, आप मुझे बेबस और लाचार समझने की भूल ना ही करें तो बेहतर है। क्या कहा? बेबस और लाचार? और नहीं तो क्या। खूब समझती हूँ मैं आप जैसे पुरुषों को जिन्हें बौद्धिक और आत्मनिर्भर महिलाएं आकर्षित तो करती हैं, पर वो सिर्फ उन्हें घर की चार दीवारी के खूंटे में ही बांधना चाहते हैं। गरिमा, मुझे ऐसा लगता था कि तुम्हारे दिल की तरह तुम्हारा दिमाग भी विशाल है, लेकिन मैं गलत हूँ। तुम बहुत ही आत्मकेंद्रित महिला हो। तुम्हें ये लगता है कि मैं तुमसे तुम्हारे बच्चे छीन लूंगा? विचारों के स्तर पर बहुत बौनी हो तुम, जो अनाथ बच्चों की सेवा पर सिर्फ अपना अधिकार समझती है। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम सेल्फ ओरिएंटेड के साथ साथ लालची भी हो। डॉक्टर कार्तिक, माइंड योर लैंग्वेज। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे लालची और आत्मकेंद्रित कहने की? मैंने तो सही को सही और गलत को गलत कहा है। अब समझ आता है कि क्यों तुम्हारा सच जो जायज है व्यक्तिगत स्तर पर सिमट कर रह गया है। शट अप डॉक्टर कार्तिक, शट अप डॉक्टर कार्तिक, कहकर वो डॉक्टर कार्तिक के घर से लौट आई थी। ऐसा लग रहा था ग्रीटिंग कार्ड ने भी उसे शट अप कह दिया था। ग्रीटिंग कार्ड के पन्ने खत्म हो गए थे। घड़ी में रात के 3 बज रहे थे और वक्त ने भी उसे स्टैचू बोल दिया था।
1: कृपया ध्यान दीजिए,
2: 12,621
0: प्लेटफॉर्म पर चेन्नई एक्सप्रेस के खड़े होने की लगातार अनाउंसमेंट हो रही थी। गरिमा का वक्त और स्पेस खत्म हो चुका था, पर कहानी अभी अधूरी थी। एक हाथ में ग्रीटिंग कार्ड और दूसरे हाथ में टिकट, गरिमा अपने विकल्प के मझधार में फंस जाती है। ग्रीटिंग कार्ड उसे उसके प्यार तक ले जा सकता है और टिकट उसे उसकी मंजिल की ओर। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। गरिमा बहुत सोचने के बाद प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ने लगती है और अपने लिखे हुए ग्रीटिंग कार्ड को डस्टबिन में फेंकने लगती है, पर वो देखती है कि डस्टबिन में बहुत से ग्रीटिंग कार्ड के टुकड़े पहले से मौजूद हैं। उसे लगता है कि शायद किसी ने अपनी रेल की टिकट को नहीं फाड़ा है, इसलिए ये मोहब्बत के परचम डस्टबिन में अभी भी किसी के इंतजार में सांसें भर रहे हैं। गरिमा अपने रेल टिकट के टुकड़े टुकड़े कर डस्टबिन में ग्रीटिंग कार्ड के कचरे पर फूल की तरह बिखरा देती है और दौड़ती हुई रेलवे स्टेशन से बाहर निकलकर एक टैक्सी

टैक्सी में बैठी गरिमा को याद आता है कि जिस दिन उसका और डॉक्टर कार्तिक का झगड़ा हुआ था, तब से डॉक्टर कार्तिक मॉर्निंग वॉक पर नहीं आए हैं। उनके घर के बाहर मरीजों की भीड़ भी नहीं दिखी। कल दोपहर को लंच के बाद उसने सेकंड फ्लोर से डॉक्टर कार्तिक की खिड़की की ओर देखा तो विंडो पर काले पर्दे लगे हुए थे। ओह माय गॉड, ये क्या किया मैंने, कहीं कोई अनहोनी ना हो गई हो। सच ही तो कहा था डॉक्टर कार्तिक ने कि मैं बहुत आत्मकेंद्रित हूं। गरिमा डॉक्टर कार्तिक के घर पहुंचकर डोरबेल बजाती है पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आता।

दरवाजा ना खुलने पर गरिमा जोर जोर से दरवाजा पीटती है। दरवाजा खोलो कार्तिक, ओपन द डोर। तुम सही थे कार्तिक, मैं अपने बच्चों के प्यार में बहुत लालची हो गई थी, जिसने आपके प्यार की गहराई को नहीं समझा। सही कहा था डॉक्टर कार्तिक आपने, अगर तुम्हारा साथ रहेगा तो अंधेरे में भी रोशनी खिल जाएगी। वी लव यू कार्तिक, वी ऑल लव यू।

0: थोड़ी देर बाद गेट खुलने की आवाज आती है। गेट पर कार्तिक खड़े हैं। गरिमा तुरंत डॉक्टर कार्तिक के गले लग जाती है और बहुत रोती है। कार्तिक गरिमा का हाथ पकड़कर अंदर लाता है। बहुत ठंड है बाहर। अच्छा तुम बैठो, मैं चाय बना कर लाता हूँ। तो चेन्नई एक्सप्रेस की टिकट फाड़ ही दी तुमने, चाय का कप थमाते हुए कार्तिक ने कहा। गरिमा शर्म से अपनी गर्दन नीचे झुका लेती है। मुझे मालूम था कि तुम जरूर लौटोगी, कल शाम को कॉन्फ्रेंस है ना तुम्हारी। देखो मैंने आज दोपहर की 2 एयर टिकट चेन्नई के लिए पहले से ही बुक की हुई है। तभी कार्तिक का मोबाइल रिंग करता है। हेलो कार्तिक, मैं अंकुर बोल रहा हूँ। सुन, प्रोफेसर गरिमा को कांग्रेट्स कह देना। कार्तिक अपने मोबाइल का लाउडस्पीकर ऑन कर देता है। क्यों कांग्रेट्स कह दूं गरिमा जी को? अरे उनके आर्टिकल्स ने हंगामा मचा दिया है। मैंने उनके आर्टिकल्स का एक कोलाज बनाया था और वो स्टोरी इतनी हिट हुई कि एक बहुत बड़ी चाइल्ड वेलफेयर एसोसिएशन उनके साथ काम करना चाहती है और एक डॉक्यूमेंट्री कंपनी उनके बच्चों पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनाना चाहती है। और तुझे पता है सबसे खास बात क्या है? क्या है कि वो सभी भारत में रहकर भारत सरकार के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। सच कहूं कार्तिक, मैं भी विदेश में रहकर थक गया हूं। मुझे भी अपने देश की मिट्टी बुलाती है। मैं भी अपने देश के लिए काम करना चाहता हूं। मैं भी अपने देश के लिए लिखना चाहता हूं। अच्छा सुन, मैं मीटिंग में हूं। मैं तुझसे और गरिमा जी से बाद में डिटेल में बात करता हूं। कार्तिक और गरिमा दोनों एक दूसरे की ओर देखते हैं। कार्तिक एयर टिकट्स की ओर इशारा करके कहते हैं, हम इनका क्या करूं? गरिमा टिकट्स को कार्तिक से छीनकर उनके टुकड़े टुकड़े कर देती है और कार्तिक के गले लग जाती है। मन ही मन बुदबुदा रही थी, सभी ने आधी रात के बाद होने वाले उजाले को पा लिया है। मिस्टर अंकुर को अपना देश मिल गया, डॉक्टर कार्तिक को उनका प्यार, गरिमा के बच्चों को उनका पिता और गरिमा को अपने हिस्से के और नए बच्चे। दोस्तों, कुछ लोग सूरज की तरह होते हैं जिनका उद्देश्य होता है लोगों के जीवन में उजाला फैलाना। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इस कार्यक्रम की परिकल्पना, निर्देशन और प्रस्तुति है रश्मि कुकरेती की। मंजू बत्रा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: तो दोस्तों, अभी आपने ये कहानी सुनी मंजू बत्रा की लिखी, उन्हीं की जुबानी, उजाले की ओर। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें अवश्य बताइएगा। हमारा ईमेल एड्रेस है fmgoldairdelhi@gmail.com।

आकाशवाणी के 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे थे पानी पर लिखी कहानी। बेहद प्यारी सी ये कहानी सुनकर हर किसी को बहुत ही प्रेरणा मिलती है, लोग मोटिवेट होते हैं और इसी तरह हर किसी की मदद करते हैं। मैं हूं श्रेयसी और पानी पर लिखी कहानी के बाद अब आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं कुछ प्यारे से नगमे के साथ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के फलता विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों, जिनमें सहायक मतदान केंद्र भी शामिल हैं, उनमें दोबारा मतदान का आदेश दिया है। आयोग ने बताया कि फलता विधानसभा क्षेत्र में बुधवार को हुए मतदान के दौरान मतदान केंद्रों पर चुनावी नियमों का गंभीर उल्लंघन हुआ और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बाधित किया गया। अब इन सभी मतदान केंद्रों पर इस महीने की 21 तारीख को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक दोबारा मतदान होगा। वोटों की गिनती 24 मई को होगी। पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले में विधानसभा की 2 सीटों के 15 बूथों पर कल पुनर्मतदान कराया गया। मगराहट पश्चिम के 11 बूथ और डायमंड हार्बर के 4 बूथ पर वोट डाले गए। कल शाम 5 बजे तक लगभग 87% मतदान हुआ।
1: दोनों ही विधानसभा क्षेत्रों में मतदान कुल मिलाकर शांतिपूर्ण रहा। चुनाव आयोग ने संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों और पर्यवेक्षकों से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर पुनर्मतदान का आदेश दिया था। इन मतदान केंद्रों पर विधानसभा चुनावों के दूसरे चरण के तहत पिछले महीने की 29 तारीख को वोट डाले गए थे। पश्चिम बंगाल, केरलम, तमिलनाडु, असम और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में विधानसभा चुनावों के वोटों की गिनती सोमवार को होगी। असम की सभी 126 सीटों, केरलम की 140 और पुदुचेरी की 30 सीटों के लिए 9 अप्रैल को मतदान कराया गया था। तमिलनाडु की सभी 234 विधानसभा सीटों और पश्चिम बंगाल में पहले चरण के तहत 152 सीटों के लिए और दूसरे चरण में 142 सीटों के लिए मतदान कराया गया। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में 165 अतिरिक्त मतगणना पर्यवेक्षकों और 77 पुलिस पर्यवेक्षकों की तैनाती की है। मतगणना के दिन पुलिस पर्यवेक्षक किसी भी परिस्थिति में मतगणना क्षेत्र कक्ष में प्रवेश नहीं करेंगे। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव की मतगणना की तैयारियां जोरों पर है। राज्य की सभी 234 विधानसभा सीटों पर 23 अप्रैल को एक ही चरण में मतदान हुआ था। मतगणना सोमवार सुबह 8 बजे डाक मतपत्रों से शुरू होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल चुनाव की मतगणना के लिए केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति के खिलाफ टीएमसी की याचिका में दखल देने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और जॉय मौल्य बागची की विशेष पीठ ने कहा कि निर्वाचन आयोग के पास मतगणना के लिए कर्मियों को नियुक्त करने का पूर्ण अधिकार है और 13 अप्रैल 2026 का परिपत्र, जिसमें केंद्रीय कर्मचारियों को शामिल करने का निर्देश था, उसे गलत नहीं कहा जा सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉ आर बालासुब्रमण्यम और डॉ जोरम अनिया को नीति आयोग के

नजराना लेकर हाजिर हूं मैं श्रेयसी। 100.1 मेगाहर्ट्ज पर एफएम गोल्ड चैनल पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने और संग हूं मैं श्रेयसी इस गाने के नजराने के साथ। तो इसी तरह हम अपने इस गीतों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और फिर छेड़ते हैं वो रात गीतों वाली।

वो कहते हैं ना, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है।

खुशबू फिल्म का ये प्यारा सा नगमा आपने अभी सुना दोस्तों, आशा भोसले की आवाज में बोल सजाए गुलजार ने और म्यूजिक दिया आरडी बर्मन साहब ने। कार्यक्रम चल रहा है गीत सुहाने संग हूं मैं श्रेयसी और पूरी कोशिश है कि आपको एक से एक प्यारे सुहाने गीतों का संकलन यहां मिल सके। बढ़ते हैं अब अपने इस अगले गीत की तरफ।

देश परदेस फिल्म से ये गीत हमने लिया दोस्तों। आवाजें लता मंगेशकर और किशोर कुमार की, बोल सजाए अमित खन्ना ने और संगीत दिया राजेश रोशन ने।

जब हम बात करते हैं किसी प्यारे, किसी बड़े ही दिल को छू जाने वाले नगमे की, तो कहीं ना कहीं वो नगमा हमारे किसी पुरानी यादों के झरोखों से होकर गुजर जाता है और फिर बस दिल यूं ही कह उठता है, बेखुदी कहां ले गई हमको, बेखुदी कहां ले गई हमको, देर से इंतजार है अपना, रोते फिरते हैं सारी सारी रात, अब यही रोजगार है अपना। बढ़ते हैं अब हम इस अगले गीत की तरफ। फिल्म साथ साथ से ये गीत लिया हमने, आवाज है जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की, बोल सजाए जावेद अख्तर ने और संगीत दिया कुलदीप सिंह ने।

प्यार मोहब्बत जब अपना सही रूप ले लेता है, जब प्यारा सा दिल एक सही नाम पे आ जाता है, एक सही पहचान में आ जाता है, तो एक प्यारा सा घर यूं ही बसता जाता है। बिक जाते हैं यहां चंद सिक्कों के लिए लोग, बिक जाते हैं यहां चंद सिक्कों के लिए लोग, चीखता हुआ उनका जमीर देखता रहता है। तख्त पे बैठा हुआ वो मीर, तख्त पे बैठा हुआ वो मीर, रोज रहता है परेशान, रोज झूमता हुआ एक मस्त फकीर देखता रहता है।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में फिल्म हीरा पन्ना से ये नगमा हमने सुना। बोल सजाए थे आनंद बख्शी ने और संगीत दिया आरडी बर्मन साहब ने। आनंद बख्शी जी का ही एक और प्यारा सा गीत मैं आपके सामने रखने जा रही हूं। फिल्म सुहाग का ये गीत है, बोल आवाजें हैं शैलेंद्र, आशा भोसले और रफी साहब की, और गीत संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। आइए सुनते हैं ये गीत।

फिल्म उमराव जान से ये गीत अभी आपने सुना दोस्तों। आशा भोसले की आवाज, खयाम के सजाया संगीत और बोल शहरयार के। कार्यक्रम चल रहा है गीत सुहाने, संग हूं मैं श्रेयसी और गीतों का सिलसिला एफएम गोल्ड पर यूं ही जारी है।

और इसी गीत के साथ दोस्तों कार्यक्रम गीत सुहाने को हमें देना होगा विराम। जल्द आप सुनेंगे समाचार और समाचारों के पार फिर से मैं श्रेयसी जुड़ूंगी आपके साथ। धन्यवाद।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले के फलता विधानसभा क्षेत्र में पूरी मतदान प्रक्रिया को रद्द करने का एक असाधारण कदम उठाया है। 21 मई को सभी 285 मतदान केंद्रों, जिनमें सहायक बूथ भी शामिल है, उन पर दोबारा मतदान होगा। मतगणना 24 मई को होगी। आयोग ने बताया कि यह फैसला 29 अप्रैल को मतदान के दौरान गंभीर चुनावी अनियमितताओं और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर की गई गड़बड़ियों की शिकायतें मिलने के बाद लिया गया है। पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट में कई गंभीर अनियमितताओं की ओर इशारा किया गया है, जिनमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से छेड़छाड़, मतदाताओं को डराना धमकाना और मतदान नियमों का उल्लंघन शामिल है। कई बूथों पर बैलेट यूनिट के बटनों को जानबूझकर काली टेप से ढक दिया गया था, जिससे ठीक से मतदान नहीं हो पाया। अनाधिकृत लोगों को भी मतदान केंद्रों में घुसते और दूसरों की जगह वोट डालते हुए देखा गया। वीडियो फुटेज का गायब होना या उसमें विसंगतियां मिलना पारदर्शिता को लेकर गंभीर चिंता को दर्शाता है। पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले में विधानसभा की दो सीटों के 15 बूथों पर कल पुनर्मतदान कराया गया। मगराहट पश्चिम के 11 बूथ और डायमंड हार्बर के 4 बूथ पर वोट डाले गए। कल शाम 5 बजे तक लगभग 87% मतदान हुआ।
1: दोनों ही विधानसभा क्षेत्रों में मतदान कुल मिलाकर शांतिपूर्ण रहा। चुनाव आयोग ने संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों और पर्यवेक्षकों से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर पुनर्मतदान का आदेश दिया था। इन मतदान केंद्रों पर विधानसभा चुनावों के दूसरे चरण के तहत पिछले महीने की 29 तारीख को वोट डाले गए थे। पश्चिम बंगाल, केरलम, तमिलनाडु, असम और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में विधानसभा चुनावों के वोटों की गिनती सोमवार को होगी। असम की सभी 126 सीटों, केरलम की 140 और पुदुचेरी की 30 सीटों के लिए 9 अप्रैल को मतदान कराया गया था। तमिलनाडु की सभी 234 विधानसभा सीटों और पश्चिम बंगाल में पहले चरण के तहत 152 सीटों के लिए और दूसरे चरण में 142 सीटों के लिए मतदान कराया गया। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में 165 अतिरिक्त मतगणना पर्यवेक्षकों और 77 पुलिस पर्यवेक्षकों की तैनाती की है। मतगणना के दिन पुलिस पर्यवेक्षक किसी भी परिस्थिति में मतगणना कक्ष में प्रवेश नहीं करेंगे। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव की मतगणना की तैयारियां जोरों पर हैं। राज्य की सभी 234 विधानसभा सीटों पर 23 अप्रैल को एक ही चरण में मतदान हुआ था। मतगणना सोमवार सुबह 8 बजे डाक मतपत्रों से शुरू होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल चुनाव की मतगणना के लिए केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति के खिलाफ टीएमसी की याचिका में दखल देने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और जॉय माल्य बागची की विशेष पीठ ने कहा कि निर्वाचन आयोग के पास मतगणना के लिए कर्मियों को नियुक्त करने का पूर्ण अधिकार है और 13 अप्रैल 2026 का परिपत्र, जिसमें केंद्रीय कर्मचारियों को शामिल करने का निर्देश था।

आकाशवाणी के 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का एफएम गोल्ड चैनल कार्यक्रम रात सुरमई लेकर आपके संग हूं मैं श्रेयसी। तो आइए इस रात को बेहतरीन बनाएं कुछ बेहतरीन गीतों के संग। शुरुआत करते हैं हम इस गीत से, फिल्म मन मंदिर का ये नगमा किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में बोल सजाए हैं राजेंद्र किशन ने और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

ये गीत भी कितने अजीब होते हैं ना। कुछ गीत हमें किसी यादों में ले जाते हैं तो कुछ गीत हमें फ्यूचर प्लानिंग में लगा देते हैं। इसी तरह से कई सारे गीत हमें किसी के करीब भी होने का एहसास कराते हैं। कभी लोग पास होकर भी अजनबी लगते हैं और कभी अजनबी भी अपने से करीब लगते हैं। जिंदगी की यही सबसे अजीब सच्चाई है, रिश्ते खून से नहीं एहसास से जुड़ते हैं। आइए बढ़ते हैं अब अपने इस अगले गीत की तरफ।

फिल्म मेरा साया का ये गीत दोस्तों आपने सुना, लता मंगेशकर की आवाज, राजा मेहंदी अली खान के सजाए बोल थे और संगीत मदन मोहन का। अगला नगमा आपके साथ साझा करने जा रही हूं, फिल्म पत्थर के सनम का ये बेहतरीन गीत है, लता मंगेशकर की आवाज में बोल सजाए हैं मजरू सुल्तानपुरी ने और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

ये गीत ही तो हैं जो हमारे जज्बातों को शब्दों में पिरो करके और बस बयां कर जाते हैं। तेरी अहमियत बयां कर पाऊं इतनी मेरे शब्दों में बात नहीं, तेरी अहमियत बयां कर पाऊं इतनी मेरे शब्दों में बात नहीं, और तू रूह तक बसा है मेरे, तुझे मुझसे अलग कर पाना इतना आसान नहीं।

फिल्म अजनबी का ये नगमा दोस्तों सुना आपने किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में। आनंद बख्शी के सजाए बोल और संगीत आरडी बर्मन साहब का। अगला गाना जो आपके साथ साझा कर रही हूं, दाग फिल्म से लिया हमने किशोर कुमार की आवाज और लता मंगेशकर की आवाजों में। म्यूजिक दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और बोल हैं साहिर लुधियानवी के।

लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म ज्वेल थीफ का ये नगमा आपने सुना दोस्तों। बोल सजाए मजरू सुल्तानपुरी के और म्यूजिक दिया है एसजी बर्मन साहब ने। आइए अब चलें अगले गीत की तरफ। फिल्म वो कौन थी का ये नगमा आपके साथ साझा करने जा रही हूं। लता मंगेशकर की आवाज में है, बोल है अनजान के और संगीत दिया है आरडी बर्मन साहब ने।

किसी ने खूब कहा है, अधूरा ही सही पर हमने तुम्हें पाया तो है। अधूरा ही सही पर हमने तुम्हें पाया तो है, लिखने वाले ने लिखा नहीं किस्मत में, मगर जिंदगी ने हमें तुमसे मिलाया तो है।

ये गीत भी कितना अजीब है दोस्तों। कुछ कहने के लिए तो हमेशा ही हमारे पास एक से एक बेहतरीन गीत होते हैं, कुछ बयां करने के लिए, कुछ जताने के लिए, मोहब्बत दिखाने के लिए, गुस्सा दिखाने के लिए, हर चीज के लिए हमारे बॉलीवुड में एक से एक बेहतरीन नगमे हैं। अब ये गीत भी अपने आप में एक उम्दा मिसाल है उन फनकारों की, जो कुछ ना कहने पर भी, किसी जज्बात को ना बयां करने पर भी एक गीत बना बैठे। फिल्म थोड़ी सी बेवफाई का ये नगमा बोल सजाए गुलजार साहब ने, म्यूजिक दिया खयाम ने और आवाजें थी लता मंगेशकर और किशोर कुमार की। लता मंगेशकर का ही एक और नगमा आपके साथ साझा करने जा रही हूं, जो मेरे लिए काफी प्रिय है। फिल्म चुपके चुपके का ये गीत आनंद बख्शी के सजाए बोल और एसडी बर्मन साहब का संगीत। आइए सुनते हैं ये नगमा।

गीतों का सिलसिला बस इसी तरह जारी है। कार्यक्रम चल रहा है रात सुरमई और संग हूं मैं श्रेयसी। किसी से रूठो तो संभल कर रूठो। जी हाँ जनाब, किसी से रूठो तो जरा संभल कर रूठो। आजकल मनाने का नहीं छोड़ देने का रिवाज है।

फिल्म प्रेम पुजारी का ये नगमा दोस्तों अभी आपने सुना किशोर कुमार की आवाज में, बोल सजाए नीरज ने और संगीत एसडी बर्मन साहब का। और इसी नगमे के साथ कार्यक्रम रात सुरमई को हमें देना होगा विराम। जल्द मिलने के वादे के साथ मैं श्रेयसी लेती हूं अब विदा। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले के फलता विधानसभा क्षेत्र में पूरी मतदान प्रक्रिया को रद्द करने का एक असाधारण कदम उठाया है। 21 मई को सभी 285 मतदान केंद्रों, जिनमें सहायक बूथ भी शामिल हैं, उन पर दोबारा मतदान होगा। मतगणना 24 मई को होगी। आयोग ने बताया कि यह फैसला 29 अप्रैल को मतदान के दौरान गंभीर चुनावी अनियमितताओं और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर की गई गड़बड़ियों की शिकायतें मिलने के बाद लिया गया है। पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट में कई गंभीर अनियमितताओं की ओर इशारा किया गया है, जिनमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से छेड़छाड़, मतदाताओं को डराना धमकाना और मतदान नियमों का उल्लंघन शामिल है। कई बूथों पर बैलेट यूनिट के बटनों को जानबूझकर काली टेप से ढक दिया गया था, जिससे ठीक से मतदान नहीं हो पाया। अनाधिकृत लोगों को भी मतदान केंद्रों में घुसते और दूसरी के जगह वोट डालते हुए पाया गया। वीडियो फुटेज का गायब होना या उसमें विसंगतियां मिलना पारदर्शिता को लेकर गंभीर चिंताओं को दर्शाता है। पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले में विधानसभा की दो सीटों के 15 बूथों पर कल पुनर्मतदान कराया गया। मगराहट पश्चिम के 11 बूथ और डायमंड हार्बर के 4 बूथ पर वोट डाले गए। कल शाम 5 बजे तक लगभग 87% मतदान हुआ।
1: दोनों ही विधानसभा क्षेत्रों में मतदान कुल मिलाकर शांतिपूर्ण रहा। चुनाव आयोग ने संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों और पर्यवेक्षकों से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर पुनर्मतदान का आदेश दिया था। इन मतदान केंद्रों पर विधानसभा चुनावों के दूसरे चरण के तहत पिछले महीने की 29 तारीख को वोट डाले गए थे। पश्चिम बंगाल, केरलम, तमिलनाडु, असम और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में विधानसभा चुनावों के वोटों की गिनती सोमवार को होगी। असम की सभी 126 सीटों, केरलम की 140 और पुदुचेरी की 30 सीटों के लिए 9 अप्रैल को मतदान कराया गया था। तमिलनाडु की सभी 234 विधानसभा सीटों और पश्चिम बंगाल में पहले चरण के तहत 152 सीटों के लिए और दूसरे चरण में 142 सीटों के लिए मतदान कराया गया। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में 165 अतिरिक्त मतगणना पर्यवेक्षकों और 77 पुलिस पर्यवेक्षकों की तैनाती की है। मतगणना के दिन पुलिस पर्यवेक्षक किसी भी परिस्थिति में मतगणना कक्ष में प्रवेश नहीं करेंगे। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव की मतगणना की तैयारियां जोरों पर हैं। राज्य की सभी 234 विधानसभा सीटों पर 23 अप्रैल को एक ही चरण में मतदान हुआ था। मतगणना सोमवार सुबह 8 बजे डाक मतपत्रों से शुरू होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल चुनाव की मतगणना के लिए केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति के खिलाफ टीएमसी की याचिका में दखल देने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और जॉय माल्या बागची की विशेष पीठ ने कहा कि निर्वाचन आयोग के पास मतगणना के लिए कर्मियों को नियुक्त करने का पूर्ण अधिकार है और 13 अप्रैल 2026 का परिपत्र, जिसमें केंद्रीय कर्मचारियों को शामिल करने का निर्देश था, उसे गलत नहीं कहा जा सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉ आर बाला सुब्रमण्यम और डॉ जोरम अनिया को नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त होने पर बधाई दी है। स्नातक चिकित्सा शिक्षा पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी आज आयोजित की जाएगी। परीक्षा का समय दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक है। नीट के सूचना बुलेटिन के अनुसार परीक्षा केंद्र पर दोपहर 1:30 बजे तक प्रवेश की अनुमति होगी। मार्शल द्वीप समूह के ध्वज वाला एलपीजी वाहक पोत एमटी सर्वशक्ति

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और समय हो गया है प्रोग्राम हमराही का। मैं हूं आज आपके साथ आपकी दोस्त भारती और शुरुआत करते हैं प्रोग्राम हमराही की सागर फिल्म के इस प्यारे से गीत के साथ।

रात की खामोशी में दिल एक ही सवाल दोहराता है, क्या ये धड़कनें सिर्फ मेरी हैं या इनमें तुम्हारा भी कोई राज बसता है। प्यार कभी पूछता नहीं, प्यार कभी पूछता नहीं, वो तो बस महसूस होता है।

मेरे हम सफर, ये रातें गवाह हैं हमारे साथ की। चांद भी ठहर जाता है जब तुम मेरे करीब होते हो। सफर लंबा हो या छोटा, सफर लंबा हो या छोटा, अगर साथ हो तुम तो हर रास्ता खूबसूरत लगता है।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और प्रोग्राम है हम राही। वादा रहा सनम, ये दिल अब सिर्फ तुम्हारा है। हर खुशी हर ख्वाब अब तुमसे ही जुड़ा है। चाहे वक्त बदले या हालात, चाहे वक्त बदले या हालात, ये मोहब्बत कभी कम ना होगी।

हमें कितनी हसरत थी इन राहों में हर मोड़ पर बस उनका ही इंतजार था, और जब वो सामने आए तो लगा जैसे किस्मत खुद मुस्कुरा उठी हो।

मुलाकात जैसी अधूरी दुआ का पूरा हो जाना, और वो पल ऐसे होते हैं जो हमेशा के लिए धड़कन में बस से जाते हैं।

और इस समय कह रहा है कि अब आपसे अनुमति ले ली जाए। जाने से पहले बस यही कहूंगी कि आप कहीं मत जाइएगा, 4:10 पर फिर से हाजिर होंगी लेकर प्रोग्राम अरुणिमा। तब तक के लिए मुझे दीजिए अनुमति और छोड़े जा रही हूँ एक बहुत ही प्यारे से गीत के साथ। गीत के बाद आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। कुछ ही देर के लिए आपसे लेती हूँ अनुमति। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले के फलता विधानसभा क्षेत्र में पूरी मतदान प्रक्रिया को रद्द करने का एक असाधारण कदम उठाया है। 21 मई को सभी 285 मतदान केंद्रों, जिनमें सहायक बूथ भी शामिल हैं, उन पर दोबारा मतदान होगा। मतगणना 24 मई को होगी। आयोग ने बताया कि यह फैसला 29 अप्रैल को मतदान के दौरान गंभीर चुनावी अनियमितताओं और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर की गई गड़बड़ियों की शिकायतें मिलने के बाद लिया गया है। पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट में कई गंभीर अनियमितताओं की ओर इशारा किया गया है, जिनमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से छेड़छाड़, मतदाताओं को डराना धमकाना और मतदान नियमों का उल्लंघन शामिल है। कई बूथों पर बैलेट यूनिट के बटनों को जानबूझकर काली टेप से ढक दिया गया था, जिससे ठीक से मतदान नहीं हो पाया। अनाधिकृत लोगों को भी मतदान केंद्रों में घुसते और दूसरों की जगह वोट डालते हुए पाया गया। वीडियो फुटेज का गायब होना या उसमें विसंगतियां मिलना पारदर्शिता को लेकर गंभीर चिंताओं को दर्शाता है। पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले में विधानसभा की 2 सीटों के 15 बूथों पर कल पुनर्मतदान कराया गया। मगराहट पश्चिम के 11 बूथ और डायमंड हार्बर के 4 बूथ पर वोट डाले गए। कल शाम 5 बजे तक लगभग 87% मतदान हुआ।
1: दोनों ही विधानसभा क्षेत्रों में मतदान कुल मिलाकर शांतिपूर्ण रहा। चुनाव आयोग ने संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों और पर्यवेक्षकों से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर पुनर्मतदान का आदेश दिया था। इन मतदान केंद्रों पर विधानसभा चुनावों के दूसरे चरण के तहत पिछले महीने की 29 तारीख को वोट डाले गए थे। पश्चिम बंगाल, केरलम, तमिलनाडु, असम और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में विधानसभा चुनावों के वोटों की गिनती सोमवार को होगी। असम की सभी 126 सीटों, केरलम की 140 और पुदुचेरी की 30 सीटों के लिए 9 अप्रैल को मतदान कराया गया था। तमिलनाडु की सभी 234 विधानसभा सीटों और पश्चिम बंगाल में पहले चरण के तहत 152 सीटों के लिए और दूसरे चरण में 142 सीटों के लिए मतदान कराया गया। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में 165 अतिरिक्त मतगणना पर्यवेक्षकों और 77 पुलिस पर्यवेक्षकों की तैनाती की है। मतगणना के दिन पुलिस पर्यवेक्षक किसी भी परिस्थिति में मतगणना कक्ष में प्रवेश नहीं करेंगे। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव की मतगणना की तैयारियां जोरों पर हैं। राज्य की सभी 234 विधानसभा सीटों पर 23 अप्रैल को एक ही चरण में मतदान हुआ था। मतगणना कल सुबह 8 बजे डाक मतपत्रों से शुरू होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल चुनाव की मतगणना के लिए केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति के खिलाफ टीएमसी की याचिका में दखल देने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और जॉयमौल्य बागची की विशेष पीठ ने कहा कि निर्वाचन आयोग के पास मतगणना के लिए कर्मियों को नियुक्त करने का पूर्ण अधिकार है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रख्यात गीतकार, लेखक और संचार विशेषज्ञ प्रसून जोशी को भारत के लोक सेवा प्रसारक प्रसार भारती का अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री जोशी का साहित्य, विज्ञापन, सिनेमा और जनसंचार के क्षेत्र में व्यापक योगदान रहा है। उत्तर प्रदेश में जनगणना 2027 के पहले चरण के अंतर्गत घरों की सूची बनाने का कार्य 22 मई से शुरू होगा। 7 मई से स्वगणना की सुविधा उपलब्ध होगी। उत्तर प्रदेश की मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी शीतल वर्मा ने लखनऊ में बताया कि नागरिक आधिकारिक वेबसाइट पर पंजीकरण कराकर स्वगणना सुविधा के माध्यम से इस प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। स्नातक चिकित्सा शिक्षा पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी आज आयोजित की जाएगी। परीक्षा का समय दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक है। नीट के सूचना बुलेटिन के अनुसार परीक्षा केंद्र में दोपहर 1:30 बजे तक प्रवेश की अनुमति होगी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने टी20 महिला क्रिकेट विश्व कप के लिए 15 सदस्य टीम की घोषणा कर दी है। इंग्लैंड और वेल्स की मेजबानी में यह विश्व कप

एक बार फिर से आप सबका मैं स्वागत करती हूँ। जी हाँ, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और समय हो गया है अब प्रोग्राम अरुणिमा का। मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त भारती, और शुरुआत करते हैं प्रोग्राम अरुणिमा की इस प्यारे से गीत के साथ। गीत है फिल्म सफर से मुकेश की आवाज में, गीतकार इंदिवर और संगीतकार कल्याण जी आनंद जी।

आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं अगला गीत फिल्म दिल तुझको दिया से लता मंगेशकर की आवाज में, गीतकार राजेश रोशन और संगीतकार भी राजेश रोशन।

अभी गीत आपने सुना सहरा फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में, संगीतकार रामलाल और गीतकार जो हैं वो हैं हसरत जयपुरी। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और प्रोग्राम है अरुणिमा

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल और आगे बढ़ाते हैं कार्यक्रम अरुणिमा को। सुनते हैं अगला गीत फिल्म उपहार से मुकेश की आवाज में, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

अभी आपने गीत सुना फिल्म मौसम से लता मंगेशकर और भूपेंद्र सिंह की आवाज में, संगीतकार मदन मोहन। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल और प्रोग्राम है अरुणिमा। और आगे बढ़ाते हैं प्रोग्राम अरुणिमा को, सुनते हैं अगला गीत फिल्म मेरा नाम जोकर से। जिसे अपनी आवाज से सजाया है मुकेश ने, और गीतकार और संगीतकार है शंकर जयकिशन, गीतकार हसरत जयपुरी।

और छोड़ी जा रही हूँ आपको एक बहुत ही प्यारे से गीत के साथ। मैं आपसे मिलूंगी 5:10 पर लेकर प्रोग्राम भोर सुहानी, और आप इंजॉय कीजिए इस प्यारे से गीत को और कहीं मत जाइएगा। जी हाँ, आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। ये गीत है फिल्म सपने से, और इस गीत को अपनी आवाज से सजाया है हिमा सरदेसाई ने और मलाइसिया वासुदेरा ने। गीतकार जावेद अख्तर, संगीतकार AR रहमान। गीत के बाद आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। मैं आपसे लेती हूँ अनुमति, नमस्कार।

0: दक्षिण 24 परगना जिले के फलता विधानसभा क्षेत्र में पूरी मतदान प्रक्रिया को रद्द करने का एक असाधारण कदम उठाया है। 21 मई को सभी 285 मतदान केंद्रों जिनमें सहायक बूथ भी शामिल हैं उन पर दोबारा मतदान होगा। मतगणना 24 मई को होगी। आयोग ने बताया कि यह फैसला 29 अप्रैल को मतदान के दौरान गंभीर चुनावी अनियमितताओं और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर की गई गड़बड़ियों की शिकायतें मिलने के बाद लिया गया है। पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट में कई गंभीर अनियमितताओं की ओर से इशारा किया गया है जिनमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से छेड़छाड़, मतदाताओं को डराना धमकाना और मतदान नियमों को उल्लंघन शामिल है। कई बूथों पर बैलेट यूनिट के बटनों को जानबूझकर काली टेप से ढक दिया गया था जिससे ठीक से मतदान नहीं हो पाया। अनाधिकृत लोगों को भी मतदान केंद्रों में घुसते और दूसरे की जगह वोट डालते हुए पाया गया। वीडियो फुटेज का गायब होना या उससे विसंगतियां मिलना पारदर्शिता को लेकर गंभीर चिंताओं को दर्शाता है। पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले में विधानसभा की 202 सीटों के 15 बूथों पर कल पुनर्मतदान कराया गया। मगराहाट पश्चिम के 11 बूथ और डायमंड हार्बर के 4 बूथ पर वोट डाले गए। कल शाम 5 बजे तक लगभग 87% मतदान हुआ।
1: दोनों ही विधानसभा क्षेत्रों में मतदान कुल मिलाकर शांतिपूर्ण रहा। चुनाव आयोग ने संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों और पर्यवेक्षकों से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर पुनर्मतदान का आदेश दिया था। इन मतदान केंद्रों पर विधानसभा चुनावों के दूसरे चरण के तहत पिछले महीने की 29 तारीख को वोट डाले गए थे। पश्चिम बंगाल, केरलम, तमिलनाडु, असम और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में विधानसभा चुनावों के वोटों की गिनती सोमवार को होगी। असम की सभी 126 सीटों, केरलम की 140 और पुदुचेरी की 30 सीटों के लिए 9 अप्रैल को मतदान कराया गया था। तमिलनाडु की सभी 234 विधानसभा सीटों और पश्चिम बंगाल में पहले चरण के तहत 152 सीटों के लिए और दूसरे चरण में 142 सीटों के लिए मतदान कराया गया। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में 165 अतिरिक्त मतगणना पर्यवेक्षकों और 77 पुलिस पर्यवेक्षकों की तैनाती की है। मतगणना के दिन पुलिस पर्यवेक्षक किसी भी परिस्थिति में मतगणना कक्ष में प्रवेश नहीं करेंगे। तमिलनाडु में कल सुबह 8 बजे से सभी 62 निर्धारित मतगणना केंद्रों पर वोटों की गिनती शुरू होगी। मतगणना के लिए कुल 10,545 कर्मियों को तैनात किया जाएगा। इनके सहयोग के लिए 4,624 सूक्ष्म पर्यवेक्षक भी तैनात रहेंगे। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए एक एक पर्यवेक्षक सहित कुल 234 मतगणना पर्यवेक्षक पूरी प्रक्रिया की निगरानी करेंगे और आयोग के मौजूदा निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल चुनाव की मतगणना के लिए केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति के खिलाफ टीएमसी की याचिका में दखल देने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और जयमौल्य बागची की विशेष पीठ ने कहा कि निर्वाचन आयोग के पास मतगणना के लिए कर्मियों को नियुक्त करने का पूरा अधिकार है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रख्यात गीतकार, लेखक और संचार विशेषज्ञ प्रसून जोशी को भारत के लोक सेवा प्रसारक प्रसार भारती का अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री जोशी का साहित्य, विज्ञापन, सिनेमा और जनसंचार के क्षेत्र में व्यापक योगदान रहा है। एक आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार सरकार ने रोहित जैन को रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है। श्री जैन केंद्रीय बैंक में कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। उत्तर प्रदेश में जनगणना 2027 के पहले चरण के अंतर्गत घरों की सूची बनाने का कार्य 22 मई से शुरू होगा। 7 मई से स्वगणना की सुविधा उपलब्ध होगी। उत्तर प्रदेश की मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी शीतल वर्मा ने लखनऊ में बताया कि नागरिक आधिकारिक वेबसाइट पर पंजीकरण कराकर स्वगणना सुविधा के माध्यम से इस प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। स्नातक चिकित्सा शिक्षा पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी आज आयोजित की जाएगी। परीक्षा का समय दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक है। नीट के सूचना बुलेटिन के अनुसार परीक्षा केंद्र में दोपहर 1:30 बजे तक प्रवेश की अनुमति होगी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने टी20 महिला क्रिकेट विश्व कप के लिए 15 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है। हरमनप्रीत कौर को टीम का कप्तान और स्मृति मंधाना को उप कप्तान बनाया गया है। नंदिनी शर्मा और विकेटकीपर बल्लेबाज यास्तिका भाटिया को भी टीम में शामिल किया गया है। इंग्लैंड और वेल्स की मेजबानी में ये विश्व कप 12 जून से शुरू होगा। फाइनल मुकाबला 5 जुलाई को खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Renu Kataria. The Election Commission has ordered report.

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और समय हो गया है प्रोग्राम भोर सुहानी का। मैं एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूं और मैं हूं आज आपके साथ आपकी दोस्त भारती। शुरुआत करते हैं प्रोग्राम भोर सुहानी की इस प्यारे से भजन के साथ।

जीवन में कभी धूप है तो कभी छांव है, और उस धूप और छांव में हमें वो पल ढूंढना है जिसमें नए तराने छुपे हों, जिसमें जीवन के परेशानियां, जीवन की दुख तकलीफ से निकलने का तरीका छुपा हो।

आजकल की भागदौड़ में खुद को कभी खोना नहीं है, अपने सपनों से कभी समझौता भी नहीं करना है। नई सुबह में नए सपने, और जो सपने रह गए हैं उनको पूरा करने की पूरी कोशिश करनी है।